0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: It's commercial time.
6: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
7: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
6: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
7: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
6: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
7: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
6: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
7: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है?
6: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
7: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
7: पिशावरी डेरा।
8: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music. Back to back.
3: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
4: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
4: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshig-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshig Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: You are listening 97.1 FM.

0: देख।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन
8: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 011-599-8484 या 077-021-0793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
3: रेडियो फजा 97.1 FM।

Back to back hip hop music.

0: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम।
1: के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011-5916-8231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays
11: foot tapping music.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: Back to back music.

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.

0: 97.1 FM के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।
1: हाँ जी, मुंडा सदुआ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: Hit music, back to back.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
7: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
6: सलासा ट्यूशन सेंटर?
7: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
6: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
7: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
6: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ.
8: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
9: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: You are listening.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioc straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ.
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी.
9: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
8: AMH सॉलिसिटर्स. होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे. सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने.
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
8: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
9: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
8: लो जी, ओ भी जुबानी याद है. 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2 ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है,

0: आर्याना सुपरमार्केट नाउ, ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
2: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
7: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
6: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
7: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
6: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
9: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
8: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे रहे, सोने ते सुहागा ए, कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
8: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
9: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
8: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

वेल जनाब, इस म्यूजिक एंजॉय करते करते आप लोगों को ये भी बताते चलें कि आप लोग प्रोग्राम में शामिल होंगे और किस तरह से शामिल होंगे। थोड़ा सा पुराना लेकिन आसान सा तरीका कार्य है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम में शामिल होंगे। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कीजिए और नंबर जो मैं आपको बताता हूँ उस नंबर को नोट कीजिएगा।

जाएगा। सो आर यू वेटिंग, जल्दी से मोबाइल फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। द नंबर इज 0115710097। I again repeat, this number is very slowly 0115710097। WhatsApp पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, दिल चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। काशिफ मुंतजिर हैं इस बात की कब करेंगे आप कॉल। रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन सकते हैं। किसी प्यारे को दूर बैठे सुनाना चाहें तो उसे कहिएगा, गूगल पर जाकर सर्च करें radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और करवा लें। एप्लीकेशन इज radiofaza.co.uk, तो बीच में जाके आएगा। शुरू से बताते हैं, शुरू से सुनिएगा। हाँ जी, एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM। रेडियो फजा 97.1 FM। इसके अलावा अगर आप मुझे टाइप करते हुए सुन रहे हैं तो आप मुझे फजा डैप पर भी ट्यून कर सकते हैं। अब मैं आपके और इस स्टेशन म्यूजिक के दरमियान बिल्कुल नहीं आने वाला और ना ही किसी को आने दूंगा। अब मोले नो मोला ना मारे ते मोला नहीं हो मारदा। Enjoy this beautiful music. Milte hain iske us paar. I'm your host, Usman Khan.

0: All right, once again, welcome back. आज की generation track उस पार, मुझे कहते हैं उस्मान खान with
1: काशिफ समीर.
0: ओके जी, काशिफ हमारे साथ हैं और ये बंदा मेरे सामने से गुजर गया और इसने मुझे इशारा किया, मुझे समझ नहीं आया इसने क्या किया. खैर चलें, जो भी किया आपको तो नजर आ नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको सुना दिया है. खैर जी, काशिफ हमारे साथ है. काशिफ बताइए कैसा लगा आज, पहली बार आपकी आवाज पूरी दुनिया को सुन रही है.
1: बड़े दिन की ट्रेनिंग के बाद आज फर्स्ट टाइम जो है मैं लाइव आया हूँ, तो अभी मेरे जो कानों का रंग है वो टमाटर से भी ज्यादा लाल हुआ हुआ है. प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आस्ता आस्ता रिलीज हो रहा है और इसका फीडबैक हमारे लिसनर्स जो है वो आस्ता आस्ता वो हमारे नंबर से कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह करेंगे और मैसेजेस करेंगे तो फिर पता चलेगा.
0: यानी कि आपको लगता है कि आपके ये जो कान सुर्ख हो चुके हैं इस वक्त, इनके पीछे मेहनत कम और डर ज्यादा है.
1: हाँ जी, फर्स्ट टाइम कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें डर का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा होता है. लेकिन जब हम स्टार्ट ले लेते हैं और छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनसे सीखते जाते हैं, फिर वक्त आता है कि हम भी कोई हर फील्ड का हम एक्सपर्ट बन जाते हैं.
0: That's good. तो आपको लगता है कि आज के लिसनर्स जो हैं वो आपका साथ देंगे?
1: जी बिल्कुल, जरूर साथ देंगे, क्योंकि वो कोशिश करने वालों के साथ कायनात जो है ना वो बहुत सपोर्ट करती है, तो ये सुनने वाले भी करेंगे.
0: चलें जी, फिर आप अपने सुनने वालों को बताइए कि वो किस तरह आपका साथ दे सकते हैं, कॉल या मैसेज किस तरह करेंगे.
1: हमारा लाइव कॉल का नंबर है 01157100971. ये व्हाट्सएप है, इस पर आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं. और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए www.radiofaza.co.uk पे आप जो है हमें लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं. और एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM, ये आप जो है डाउनलोड करेंगे और इससे जो आप कहीं पे भी हैं तो हम इंटरनेट के थ्रू हमको आप लोग सुन सकते हैं.
0: अच्छा जी, काशिफ साहब का हालात कुछ ऐसे हैं, अब आप देख नहीं सकते, इसलिए ना मैं आपको थोड़ा सा ना वो करके बताता हूँ कि वो इस वक्त हालात क्या है. ऐसे काशिफ साहब का कलर फेयर है और लिटरली इस वक्त काशिफ साहब का कलर जो है ना वो बिल्कुल रेड हो चुका है, अलाई का टमाटो. और वो बंदा इस बात का गवाह है, वो जो सामने बंदा नजर आ रहा है ना मुझे, वो इस बात का गवाह है कि जब पहली बार आपको ये इस चीज का एहसास हो कि लाखों लोग जो है वो आपको सुन रहे हैं, तो चेहरे का रंग कैसा होता है,
1: रेड कलर का हो जाता है बंदे का कलर.
0: लेकिन कोई बात नहीं जी, हम काशिफ को बिल्कुल साथ साथ लेकर चलेंगे. जहां पर काशिफ की सुई जरा सी डाउन होगी वहां पर मौजूम जो है उनको संभालने की कोशिश कर लेंगे. रेडियो में तो नहीं है, स्टूडियो में जरूर संभाल लेंगे. खैर गपशप जारी है, सारी रहेगी. प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक का वक्त भी बिल्कुल करीब से करीब तरान पहुंचा है, तो जब तक कमर्शियल ब्रेक नहीं आती तब तक आपको ये बता दें कि हमारे सामने मौजूम इस वक्त खड़े हैं और दोनों हाथ पीछे बांधे हैं, मूंछों को ताव दे रखा है और कह रहे हैं पुष्पा झुकेगा नहीं. जब तक माइक की ऑन है बेचारे कुछ ना कर सकते हैं ना बोल सकते हैं, खामोश आवाम की तरह खड़े हैं. अब हाथ सामने बांध लिए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि कब ये माइक बंद होगा और मैं कुछ कहूँगा. मौसम, मेरी दुआ है कि आपको ये जो जबान मिली है आप इसका इस्तेमाल कर सकें अच्छे वे में. लेकिन जब तक कमर्शियल ब्रेक नज़दीक नहीं आएगी तब तक आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी. हंसी मजाक अपनी जगह पर, जना प्रोग्राम में आप लोग शामिल होकर मैं बता सकते हैं. और आज के प्रोग्राम में आपको काशिफ और उस्मान की आवाज़ सुनने को मिलेगी, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के उस पास से डोंट गो एनीवेयर, रहेगा हमारे साथ.
2: इट्स कमर्शियल टाइम.
3: काय के खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी.
4: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
3: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नोटिगम में आ गया ना यारा. जी हाँ, तैयार हो जाए, क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
5: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी.
3: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
5: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का.
5: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है.
3: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी.
5: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें.
6: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
5: पिशावरी डेरा.
7: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
8: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
8: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
8: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
9: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
8: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
8: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
2: हिट म्यूजिक बैक टू बैक।

0: ऑलराइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके लुट के बाद भी थोड़ा सा इंतजार लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं जी। इंतजार उसी का मजा आता है जिसमें आप शिद्दत से जिस चीज का इंतजार करते हैं उसका अहतमाम पर आपको फिर हमेशा जो खुशी मिलती है वो नॉर्मल इंतजार से कई गुना ज्यादा होती है। जैसे कि आपको मेरी आवाज सुन के मिल रही होगी, और सिर्फ मेरी आवाज सुन के आपने खुश नहीं होना, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं जो सेकंड पर्सनैलिटी, जिनको प्यार से क्या कहते हैं,
1: काशिफ समीर कहते हैं।
0: काशिफ समीर प्यार से कहते हैं, गुस्से में क्या कहते हैं,
1: काशी।
0: काशी कहते हैं, काशी ओए अदराई ओए।
1: हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कहते हैं।
0: अच्छा काशिफ, कैसी लगती है प्रदेश की जिंदगी?
1: प्रदेश की जिंदगी जो है ना, वो बंदे को ऑर्गेनाइज कर देती है। तो जैसे हम पाकिस्तान में थे तो हर चीज जो हमें वो रेडी मिलती थी, माँ का प्यार मिलता था, बहन भाइयों की सपोर्ट मिलती थी। तो जब से हम इधर नॉटिंघम में या यूके में आए हैं, तो सबसे पहले टेंशन की वजह से नींद नहीं आती सुबह उठ के। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है, अपनी टी शर्ट, अपनी यूनिफॉर्म है उसको रेडी करना है, अपना ब्रेकफास्ट रेडी करना है, टाइमली जो है ना वो अपनी बस पकड़नी है, और जो है ट्रैफिक में बिल्कुल नहीं फंसना, क्योंकि वो नेक्स्ट जिधर जॉब करते हैं वो इन चीजों को नहीं मानते।
0: अच्छा वैसे मुझे बताएं, आप एक अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं और आपके बहुत से रिलेटिव्स भी ऐसे होंगे जो आपसे कहते होंगे काशी बढ़िया मौजा बीचो पाएं।
1: सबसे जो बड़ी बचत है वो जो हम सेल्फीज वगैरह या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वो जो पिक्चर्स लगाते हैं लंदन ब्रिज की, तो वो सबसे बड़ी प्रॉफिट होती है। और जो रिलेटिव्स और जानने वाले कहते हैं कि यू आर लिविंग इन हेवन,
0: मतलब ये वही साहब है कि किसी ने एक चौधरी साहब से पूछा कि चौधरी साहब दिन दे महीने से कितने को पैसे कमा लेंदे हो, उन्हें कहा यार सारे खर्चे वर्चे काट के ना एजरा तो चौधरी साहब आके है ना यही बचत है,
1: मिला के ही बचत है
0: बचत। खैर जनाब, काशिफ हमारे साथ हैं और आपके साथ उस्मान खान भी मौजूद हैं। आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं जिसका नाम ड्राइव जोन है। तो थोड़ा सा ब्लाइंड किस्म का प्रोग्राम हम लेकर चल रहे हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: और बिल्कुल, तो इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपसे जो है वो दूर हो जाएं, हम आपके साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम में नए आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे और उन्हें कहेंगे प्रोग्राम में शामिल होकर अपने होने के एहसास हमें दिलाइएगा। कॉल कर सकते हैं आप 01157100971 पे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए या बेशक आप व्हाट्सएप पर हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमारा साथ दे सकते हैं radiofaza.co.uk पर। हमारी आपको इसको क्या बोलते हैं काशिफ साहब, radiofaza.co.uk को क्या कहेंगे हम लाइव स्ट्रीमिंग को, वेबसाइट?
1: हाँ जी, इसको जो है ना वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं।
0: बस मैं तो आनो कांटेक्ट करना सी। अच्छा जनाब, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप हमें लाइव सुन भी सकते हैं। और इसके अलावा हमारे तमाम तरह आरजेस की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, कौन सा आरजे किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम गिरता है आपको वहां पर पता चल जाएगा। और आप एक बिजनेसमैन और आप चाहते हैं कि रेडियो फजा आपके बिजनेस को प्रमोट करने में आपका साथ दे, तो उसका तरीकेकार भी बड़ा आसान सा, एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज आप छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद रापता कर लेगी, या आप हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम आपसे रापता कर लेगी और आपके बिजनेस को चार चांद लगाने में आपका भरपूर साथ दिया जाएगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से, प्ले स्टोर एप स्टोर दोनों जगहों पे अवेलेबल है। अगर ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो फजा डैप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। युद्ध हो गए वो तमाम तरह रास्ते जिनके थ्रू चलकर आपने हमारे पास पहुंचना है। काशिफ का चेहरा अब फिर से जो है वो लाल टमाटर हो गया। आहा टमाटर बड़े मजेदार। मेरा ख्याल आपकी भी आजकल ये तो नहीं चल रही रूटीन, ये पॉइंट्स वाली?
1: बिल्कुल, एक छोटा बेबी है तो उसके साथ जो है वो टमाटर वगैरह और ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं।
0: शुक्र है, मिल लगा मैं कल ही फंसे हैं। एक और बता है,
1: चीफ ऑफ द कमांड है घर पे तो उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है।
0: ऑफ कोर्स ये चीजें चलती हैं। वो मैं उस दिन एक रील देख रहा था इंस्टा पे, तो उसमें भी उसने यही कहा, एक दोस्त को फोन करके कहता है यार मेरा बड़ा पैड़ा हो रहा है। सिख भाई थे तो उसने कहा कि पैड़ा हो रहा है, कहना यार मैं ना दिन रात मैं दफ्तर भी जावा आगे पीछे भी जावा सुते पे भी ना मेरे कन्ना दे विच इको आवाज आंदी नहीं केड़ी आवाज आंदी, कहना यार आहा टमाटर बड़ा मजा, कहना है ते कुछ भी नहीं मेरी तो तलाक होती होती बची है, कहना ओ किवें, कहना मेरे सोरे घर आए तो मेरे मुंह निकल गया कालू मदारी आया
1: कालू मदारी।
0: अच्छा ये पोइम्स आजकल जो है ना वो बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं सुनी तो आप भी जरूर सुनिए, अगर आपके घर छोटा कोई बेबी मौजूद है तो खुदा दा वास्ता जो उन्होंने सुनाए हो। नहीं तो ये आदत पक्की हो जाती है। और यकीन करें कि काशिफ सब यही सूरत हाल मेरे साथ भी है कि मुझे एक अरसा हो गया इस फील्ड में और मेरा हर गाना जो है वो अब जुबानी याद हो चुका था, लेकिन जब से ये सूरत हाल बनी मुझे सारी पोइम्स बनी याद होगी, गाने भूल गए।
1: नहीं, वोकैबुलरी जिंदगी में आ गई है।
0: नहीं आ गई ऑफकोर्स, लेकिन खैर जी इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और ये सबसे खूबसूरत लम्हात होते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि आपके बच्चा जब कभी आपसे किसी चीज़ की जिद करता है, कुछ मांगता है, तो उसे ज़रूर लेकर दीजिएगा, क्योंकि चीज़ें वापस आ जाती हैं, बचपन वापस नहीं आता। अगर उससे कोई चीज़ टूट जाती है या किसी चीज़ का नुकसान गिर देता है, यकीनन माँ बाप इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाते। सो खैर जी, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर किया करें, चीज़ें वापस मिल जाती हैं, बचपन वापस नहीं मिलता। और अगर कशिफ आपको याद है आपके बचपन की कोई ऐसी ख्वाहिश जो इतने बड़े होने के बाद भी अभी तक पूरी ना हो सकी हो?
1: बचपन में सबसे ज़्यादा जो है ना, मुझे जो है वो गाड़ी चलाने का शौक़ था। तो अभी जब इधर आए हैं यूके में, तो रूल्स रेगुलेशन और ट्रेनिंग जो है ना वो मैं पास नहीं कर पा रहा जो है ना इधर का लाइसेंस। तो गाड़ी तो है लेकिन चलाने की जो ख्वाहिश है वो अभी तक पूरी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं।
0: तो वो बचपन में वो रिमोट वाली गाड़ी आपने चलाई?
1: वो बड़ी वो ज्यादा चलाई है। वो दूसरी भी आती थी धागे वाली
0: अच्छा वो भी ओके जी बिल्कुल। चूंकि हमारा ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब से हमारा ताल्लुक है, तो पंजाब में गाड़ियां कम और ट्रैक्टर बचपन में ज्यादा देखने को, ट्रालियां ट्रैक्टर वो तमाम तर चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं, और उन्हीं से खेल खेल के बड़े हुए हैं। खैर मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, आप बड़े हो गए हैं
1: तकरीबन, कभी कभी फील होता है।
0: बस जनाब, गपशप और हंसी मजाक इसी तरह से जारी और सारी रहेगा, लेकिन प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम तर एंटरटेनमेंट के ज़राए भी मुहैया किए जाएं, जिन पर आप प्रोग्राम को एंजॉय करें और एंटरटेन महसूस कर सकें। तो शामिल करते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ इन तमाम तर खूबसूरत सी सवातों के लिए जो इस वक्त हमें बड़े इनहमाक से सुन रहे।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 0759315066. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ, ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, Call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

0: ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। लुट के आ चुके हैं वापस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ साथ हैं। और काशिफ बिना बोले ही गला खराब करके बैठ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे इनके गले को ठीक करने के लिए। और काशिफ बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, आज हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है ना वो फूल हैं जो मैं आपकी आपकी आपके कदमों में निछावर कर सकूँ, और ना ही वो अल्फाज हैं कि जो फूलों का अंग ले सकें। काफ़ी है।
1: हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो गया है।
0: खैर काशिफ, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। मुझे बताएं कि आपने रेडियो को क्यों ज्वाइन किया, क्यों शुरू किया आपने इसको?
1: बचपन में मैं बहुत ज्यादा शाय था, बहुत कम बात किया करता था
0: बचपन में।
1: फिर
0: 4-1 साल पहले की बात है।
1: नहीं, प्रॉपर बचपन में।
0: तो एज नहीं बताएगा ये बंदा।
1: जब वक्त गुजरता गया तो मुझे जो है ना लोगों के साथ, अजनबी लोगों के साथ बातचीत करने में जो है ना वो बड़ा मजा आता है, और जो मैं बहुत एक्सप्लेनेटिव हूँ, मेरी बातों में जो है ना वो थोड़ी सी लंबाई ज्यादा है। तो वक्त गुजरने के साथ मैंने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। तो उधर से जब मैंने अपनी वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट की तो मैं एक रेस्टोरेंट में ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था और गेस्ट रिलेशन ऑफिसर के तौर पे। तो वक्त गुजरता गया और उधर जो है ना वो मेरी ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड हो गई, और लोगों के जो कम्युनिकेशन मसाइल होते थे वो उनको मैं सॉल्व करता था। तो फिर मुझे लगा कि एक जो आरजे होता है उसके जो अल्फाज होते हैं उनमें बड़ा एक ठहराव और बड़ी तरतीब और बड़ा एक ऑर्डर होता है, तो वो मुझे ज़िंदगी में अडॉप्ट करना चाहिए। तो कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो आपको एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल ऐसे।
1: तो फिर मैंने जब सर्च की तो मुझे सबसे जो बेस्ट ऑप्शन लगा वो रेडियो आरजे वाला ऑप्शन है। ये इन लोगों के अल्फाज की जो होते हैं ना एक जादू होता है, तो वो जादू के सीखने के लिए और जादू आगे जो है ना ट्रांसफर करने के लिए मैंने रेडियो इंडस्ट्री ज्वाइन की है।
0: तो मतलब आप जादू कर रहे हैं।
1: हाँ जी, आज मेरा जो है फर्स्ट डे है जो मैं लाइव आया हूँ माइक पे।
0: दैट्स वेरी गुड, यानी कि आपने जादू सीखना जो है वो शुरू कर दिया है और अब आप बल्कि सीख चुके हैं, अब आप उसको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं।
1: हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए हम।
0: दैट्स वेरी नाइस। तो क्या समझते हैं, जितना आपने अब तक रेडियो को सीखा, जितनी देर आपकी ट्रेनिंग को गुजरी, इस दौरान आपको लगता है कि वाकई जो बातें आपने सुनी या पढ़ी थी उस कोई है को ममासलत?

0: सर जी, जब ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये काम बड़े प्रॉपर तरीके से आता है। जब हमारा कंपटीशन एक रियल वर्ल्ड में और कारीगर लोगों के साथ आता है ना, तो फिर पता चलता है कि हम कितने पानी में और हमें कितनी मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
1: मतलब एम कान सो रखनी
0: हाँ जी, कोई भी काम
1: होगी।
0: करना है या कहीं पे भी आप डीलिंग करते हैं तो आपकी सबसे जो पहला स्टेप होगा वो आपका कम्युनिकेशन का होगा।
1: ऑफ कोर्स,
0: तो कम्युनिकेशन में अल्फाज का एक अपनी वेटेज होती है, उनका एक वजन होता है, वो आरजे से बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका वो डे एंड नाइट उसकी जॉब है। तो जो लोग मतलब फ्री हैं और जिंदगी में कम्युनिकेशनल साइड पे जाना चाहते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो जो है ना ये आरजे वाली ट्रेनिंग जरूर एक बार लाइफ में ट्राई करें।
1: यानी कि आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि वो भी जादूगर बने,
0: आरजे बने, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। और सम टाइम कहीं पे भी आपको अपना एक मैसेज कन्वे करना होता है, तो आप एक बड़े अच्छे तरीके से उस मैसेज को कन्वे कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक अल्फाज की तरतीब होगी।
1: बिल्कुल जनाब, ऐसा ही होता है कि हम रेडियो वालों को, आरजेस को, लोग जो हैं वो बातों का जादूगर कहते हैं कि हमें बातें करना आती हैं। और ना सिर्फ बातें करनी आती हैं बल्कि हम काम भी अच्छे करते हैं, हम आपके लिए अच्छे अच्छे गाने भी तो शामिल करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मीडिया के फील्ड में आपको पता होगा कि तीन स्टेप्स होते हैं, आरजे, डीजे और वीजे। जब आप एक अच्छे आरजे बन जाते हैं तो डीजे और वीजे बनना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आजकल का काशिफ जिस तरह का दौर जा रहा है, सोशल मीडिया ने हमें इस चीज़ों से काफ़ी आगे ले गया और अब हम डायरेक्ट वीजे बन जाते हैं, व्लॉगर्स बन जाते हैं। और अब मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो रेडियो में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनसे कहूँगा कि मीडिया की पहली सीढ़ी हमेशा रेडियो होती है। और रेडियो को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको होता है वो ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पावरफुल हो जाते हैं, आप किसी को भी कायल कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी बातों में उलझा सकते हैं।
0: अभी जो रिसेंट इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, और इस तरह का कोई भी इशू होता है और लाइक बाय लोड शेडिंग हो जाती है और दूसरे जो कम्युनिकेशन के मींस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो रेडियो जो सबसे जो मेन रह जाता है इंफॉर्मेशन का जरिया, वो रेडियो रह जाता है।
1: रेडियो रह जाता है,
0: कोई कहीं पे भी वो फंस चुका है या किसी उसका कनेक्शन खत्म हो गया, अगर उसके पास रेडियो उसको अवेल हो जाए तो वो दुनिया से बाखबर रह सकता है कि मेरी सराउंडिंग में अभी क्या चल रहा है।
1: ऑफकोर्स, ये बिल्कुल बात आपने सही कही, लेकिन हमारे पास अभी वक्त जो है वो कमर्शियल ब्रेक का नजदीक आ चुका है। तो मैं सोच रहा था कि कमर्शियल ब्रेक से पहले ये गाना जो मैंने निकाल के रखा हुआ था, ये मैं अपने सुनने वालों को एक दफा सुना दूं। मेरे जितने भी सिख वीर मैंने इस टाइम सुन रहे हैं ना, मेरे तमाम तर सिख वीर वास्ते सोना जिस रखा जाए गाना, उम्मीद है कि तुम्हें जरूर चंगा लगेगा। आप मिलेंगे इस गाने के उस पार रवि साढ़े नाल, मैनू कहते हैं उस्मान खान के साढ़े नाल मौजूद ने
0: काशिफ समीर, आरजे काशिफ समीर,
1: आरजे काशिफ समीर। काशिफ थोड़ा जाना एक दो सेकंड पीछे ने आज दे दी नाश्ते।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे,
0: वक्त दे नाल चीज़ा ठीक हो
1: जाएंगे। जी बिल्कुल सोने, वक्त दे नाल हर चीज़ ठीक हो जाती है, ऐसी बंदा भी ठीक कर लेंगे। फिलहाल तुसी सोना जगाना सुनो।

0: All right, जी, once again, welcome back. आरजे उस्मान खान आपके साथ विद काशिफ, आरजे काशिफ, और of course आप अपने नाम के साथ आरजे अब तो लगा ही सकते
1: हैं। हाँ जी, बिल्कुल आरजे, आज फर्स्ट डे है जो मैं अटैच कर सकता हूँ।
0: That's very good. चलें जी, वैसे पहले प्रोग्राम के बाद बड़े कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है कि वो अपने नाम के साथ आरजे लगा सके, लेकिन जाइए क्या याद करेंगे आप भी, किस टीचर से पाला पड़ा है आपका।
1: हाँ जी, बिल्कुल ऐसे
0: ही। खैर काशिफ, मुझे बताइए कैसा रहा आज का सफर आपका, और क्या फील किया, क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे?
1: पहले तो जब ट्रेनिंग चल रही थी तो माइक से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो जब ये प्रोग्राम ओपन किया है तो लाइव आए हैं, तो जो मकानों का कलर है वो यूट्यूब की तरह रेड हो गया था।
0: अच्छा।
1: कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी, तो फिर आपकी जो है असिस्टेंस और जो आपकी शफकत है तो उसने आस्ता आस्ता रिलैक्स किया।
0: तो अभी और थोड़ी सी तारीफ,
1: क्वाइट जो है ना,
0: थोड़ी सी तारीफ और करूंगा
1: जी,
0: थोड़ी सी तारीफ
1: जो है ना, इन फ्यूचर और लाइफ में ये चीजें मुझे जो है ना वो बहुत ज्यादा असिस्ट करेंगी, तो अभी मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तारीफ नहीं सो और मेरी की थी है।
1: नहीं, वो ज्यादा भी अच्छी नहीं होती, फिर वो जो है ना
0: बदहजमी हो
1: जाती, डाइजेस्ट नहीं होती।
0: जी हाँ जनाब, सिस्टम हिला हुआ है, और बस वो क्या कहते हैं कि जमाने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, तो आर्जन में कभी कभी खांसी आ जाती है।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: तो जी हंस देगी सब पे क्योंकि मीनू नहीं आई है।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: अच्छा, ये हिचकी भी साथ साथ ही है। खैर जनाब, अब वक्त इजाज़त जो है वो काफ़ी करीब आन पहुँचे, और काशिफ ने बताया कि इनके कान और इनका इनकी चिक्स जो हैं वो यूट्यूब बन गई थी, और लेकिन खैर ये सारी चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी, पार्ट ऑफ जॉब है ये, साथ साथ चलेगा। लेकिन इसमें आप मुझे बताएं कि अब तक आपने अभी तक के प्रोग्राम में क्या लर्न किया?
1: अभी लर्न किया कि हमें जब किसी के साथ बात करनी है तो उसके लिए उस लेवल की आवाज में जो है ना वो ताकत होनी चाहिए। ताकत तभी आती है जब आपका जो है ना वो हिचकिचाहट और जो कोविडनेस है वो खत्म होती है, वो तभी होती है जब आप फर्स्ट स्टेप जो लेते हैं। आज मैंने फर्स्ट स्टेप लिया तो मुझे बहुत जो है ना अच्छा फील हो रहा है।
0: वेरी गुड।
1: तो
0: यानी कि प्रोग्राम खत्म करने के बाद पार्टी होगी एक।
1: हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जो हमारे लिसनर्स हैं वो बताएंगे कि फर्स्ट डे कैसा गुजरा है उसके लिए।
0: ये फीडबैक तो हमें जरूर देंगे हमारे लिसनर्स कि आज का शिफ्ट की आवाज सुन के उन्हें कैसा लगा, और कॉन्फिडेंस
1: बर्दाश्त भी इनको करना पड़ेगा
0: शुरू शुरू में, बर्दाश्त।
1: हाँ जी,
0: एशियन लोग हैं, काटी बर्दाश्त कर देने,
1: वो फिर जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो मैं इनका हो सकता है कि आगे चल के फेवरेट आगे बढ़े।
0: मतलब आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस दीजिए। वेरी गुड, सपोर्ट आपको जरूर मिलेगी, और ऑफ कोर्स रेडियो का मेन मकसद जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, और एक आरजे में सबसे बड़ी चीज जो होती है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है। शुरुआत हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता मजीद तरक्की होगी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये शाइनेस जो है इसको मजीद बढ़ाया जाए या कम किया जाए।
1: कम किया जाए,
0: और कॉन्फिडेंस शाइनिंग जो आ रही है आपके चीक स्पेस को,
1: ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी।
0: ये भी बढ़ेगी,
1: कॉन्फिडेंस गेन होगा।
0: ऑलराइट जनाब, उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों को जरूर मजा आया होगा, और काशिफ की बातें जो हैं बड़ी चुलबुली सी बातें थी, नॉटी सी बातें थी, और इनकी बातें सुनकर इनके साथ बातें करके जो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा शाय है। उम्मीदन मेरा ख्याल है कि मर्दों से ऐसी वो शायनेस की तवक्को नहीं होती ना जितनी आप में थी, क्या वजह?
1: वो यही है कि जब आप कई और काम करते हैं तो वो तो उधर आप महदूद रहते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ की दुनिया है ये ऐसी दुनिया है जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सोच और समझ ख़त्म हो जाती है शुरू शुरू में।
0: चलें जी, ऐसा तो फिर हो जाता है अक्सर ऐसे कामों में। उम्मीद है कि कल के प्रोग्राम में जब मैं और काशिफ साथ होंगे तो इनकी आवाज़ आपको एक भरपूर एनर्जेटिक टाइप की मिलेगी, और मेरा ख्याल है मुझे कम बोलना पड़ेगा, और ये मुझे बोलने का मौका भी कम ही देंगे जिस तरह आज मैं दे रहा हूँ।
1: हाँ, कल जो इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं वो 360 एंगल पे रोटेट करेंगी।
0: ऑलराइट, कोशिश करेंगे कि ऐसा हो सके। फिलहाल अपने मेज़बान उस्मान खान और काशिफ साहब को दीजिए इजाज़त इस बात के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। हमेशा कोशिश कीजिए कि वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बट रहे, और बाखुदा वहाँ पर प्यार दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। काशिफ, मैं चाहूँगा जाने से पहले अपने लिसनर्स को कोई ख़ास पैगाम अगर आप देना चाहें तो।
1: हस्प जो है ना मेरे लिए, जो मैं अपने सुनने वालों को यही कहूंगा कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो पूरी लगन के साथ करें, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई काम सीख रहे हैं, और वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम अगर आपने जल्दी सीखना है तो अपने उस्ताद और अपने मेंटोर्स की जो है ना नंबर तादाद को बढ़ाएं, क्योंकि काम वही है लेकिन बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, वो जब वो मुख्तलिफ तरीके से करते हैं उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। तो जब आप बहुत अपने वो जो आपके मेंटोर्स ज्यादा होंगे तो आपके जो काम में शाइन बड़ी जल्दी आएगी। तो आप एक क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम आएगी उन सब के साथ शेयर करेंगे तो आपके पास बड़ी जल्दी जो है ना एक करेक्टिव किस्म की जो है ना वो आपको असिस्टेंस मिलेगी जिससे आपका काम बेहतर हो सकेगा।
0: बिल्कुल जनाब, इसी बात के साथ काशिफ किस बात के साथ दीजिए इजाजत मुझे भी और काशिफ को भी। कल सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे आप दोबारा मुलाकात करेंगे। बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का फजा 97.1 FM को ट्यून प्लस चूज करने का और फजा डैप पर भी हमारे साथ निभाने का। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत, आपका और हमारा सबका अल्लाह निगेबान।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM.
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS.
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी.
9: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
10: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
9: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
10: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
9: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
10: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
9: Park Foods, जो नाम है मायार का.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: Get ready to move.
1: It's all about the beats.
2: Wow, FM.
3: Only Tune Super Hit Channel.
4: Fizz on 97.1 FM.
5: ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਬਾਬਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾ
6: ਠਹਿਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਯੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੇ
7: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: Attention!
9: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
10: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए
11: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं
10: सलासा ट्यूशन सेंटर
11: जी हाँ इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है
10: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता
11: मसला ही कोई नहीं सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है
10: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ
12: जी हाँ आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231 कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा
13: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
14: Hits.
15: Music never sounded better.
16: Fizz on 97.1 FM.
17: I love it.
18: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप।

वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: bigger and better the radio station for people who love music.
6: You are listening 97.1 FM.

0: जरा गट के घबरू। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

0: Ik ben rood.
1: Tilke omange hai jawan. Rang mein duba hai samaan.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

फिर आप क्या हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening to 97.1

सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।

0: suku, suku.
1: You're listening to 97.1 FM. This is Radio Fazzo.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.